नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में

0: किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो

0: अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण

0: कानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.air.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा

0: रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है। 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था।
4: द कावर्डली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम लास्ट ईयर आउटरेज द एंटायर नेशन एंड स्टर्ड डीप इमोशंस अक्रॉस द कंट्री। इन रिस्पांस ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। व्हाइल द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स प्लेड क्रूशियल ऑपरेशनल रोल्स इन द मिशन द इंडियन नेवी

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर्स। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं 107.1 FM रेनबो के 24/7 संगीत में सफर पर मस्त मुंबई में। और आज की मॉर्निंग आपके साथ है आपकी आरजे दोस्त। और हम कहां जाने वाले हैं भाई, बताते हैं। पहले आप सफर की तैयारी तो कर लीजिए।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
1: मन की बात।
2: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
3: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
4: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
5: श्रोते हो नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 वाजता अस्मिता वाहिनी सह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर।

यात्रा ना कोई ऐसा शब्द है जिसे कि रोमांच पैदा होता है। हम नाम लें यात्रा का, ट्रेवल का, पर यात्रा या ट्रेवल कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिया जाता है, और फिर इन मेमोरीज को सदा के लिए नज़ाकत से संजोया जाता है। अगर आप सिर्फ देख लेने की नीयत से सफ़र पर निकलते हैं ना, तो बहुत कुछ नज़र के सामने होते हुए भी अनदेखा रह जाता है। लेकिन जब आप ऐसी यात्रा करते हैं जिससे लौटते वक्त आपका दिल किस्सों, तजुर्बों, नई जानकारियों और अनकही यादों से लबरेज हो, तब वह यात्रा सच में आपके जीवन को बनाती है संपन्न, समृद्ध। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं 8657661071 के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी। और आज हम कहाँ चलने वाले हैं ये भी सस्पेंस, और आज आपके साथ कौन है, चलिए एक तो सस्पेंस मैं खोल देती हूँ। आज मैं हूँ आपके साथ आपके RJ दोस्त वैशाली।

दोस्तों आज ना हम उत्तराखंड के सबसे पवित्र और रोमांचक तीर्थ यात्राओं में से एक पर चल रहे हैं और आप मेरे साथ इस सफर का आनंद लीजिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनमें से एक है भगवान शिव का सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग, जो समुद्र तल से 3,583 मीटर पर स्थित है, केदारनाथ धाम। तौरास्ती तुम नाथम च शिशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारी ममलेश्वरम परलनाम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतु बंधे च रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारनम घृणेशम च शिवालय। जी हाँ, यही है वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें से एक केदारनाथ धाम है, जो कि बसा है हिमालय की गोद में।

कितना अच्छा लगा ना, कितना सुकून है इस गीत में। देखिए संडे मॉर्निंग है, हैप्पी मॉर्निंग है और आप ट्रैवलिंग के लिए तैयार हैं, पर ट्रैवल की ना जो दृष्टि होती है वो अलग भी हो सकती है। जैसे एक बानगी देखिए, आप यदि श्रीनगर या एलेप्पी जाते हैं तो एक रात वहाँ बिताइए हाउस बोट में। हिमाचल जाएं तो लकड़ी के घरों की सादगी को अपनाइए। राजस्थान की हवेलियाँ यदि घूमते हैं तो वो महज इमारतें नहीं है बल्कि बीते वक्त की जिंदा दास्तान है। जानते हैं ऋषिकेश में माँ गंगा किनारे टेंट में गुजारी गई रात आत्मा को तसल्ली देती है। आजमा के देखिएगा पुडुचेरी के फ्रेंको तमिल अंदाज के रेस्ट हाउस, गोवा के पुर्तगाली होम स्टे, अंडमान के नीले अथाह सागर के बीच बने जो हट्स होते हैं वो, कच्छ के रण में भुंगा शैली के पारंपरिक गोल घर और किसी गांव की मिट्टी की खुशबू से भरे देसी आंगन, ये सब ठहरने की जगह नहीं है। नहीं है भाई, सिर्फ ठहरने के लिए नहीं है, ये जगह है यादों के ऐसे किरदार हैं जो सफर को करते हैं कंप्लीट, एक आपको पूर्णता प्रदान करते हैं। होटल्स जो होते हैं ना वो आपको आराम दे सकते हैं मगर आपके अनुभवों यानी कि मेमोरेबल सेल्फ एक्सपीरियंस में कुछ खास इजाफा नहीं कर पाते। अभी 10 दिन पहले ही ना मैं केदारनाथ होकर आई, एक दिव्य दर्शन की अनुभूति करी मैंने और वहाँ पे एक रात बिताई। और ये ऐसी जगह है जहाँ का जो आपको जो आनंद मिलता है, आप जिन समा में जिस समा में खो जाते हैं उसको हम शब्दों में बयां करना शायद बहुत बहुत मुश्किल है। और दिल करता है बस जैसे हम 10 दिन पहले मैं वहाँ थी, आज भी बस मेरा दिल, मेरा तन, मेरा मन बस वहीं बसा है और बसा रहे।

0: जो बात इस जगह में है कहीं फिर नहीं, बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है इन जगहों के लिए। जब हम बात कर रहे हैं हिमालय की चढ़ाई की, मैंने आपको कहा ना कि ये जो चढ़ाई है हिमालय की चढ़ाई, क्योंकि हम जा रहे हैं केदारनाथ, और केदारनाथ में ना जो सबसे कॉमन होता है वो होता है चढ़ाई करना। चढ़ाई के लिए वैसे आपको घोड़ी, पिट्टू या पालकी की सवारी की सुविधा होती है, पर पैदल चलना भी लोगों का एक जुनून होता है। और यदि कहा जाए रास्ते के बारे में, तो पहले 5 किलोमीटर ना थोड़ी सांस फूलती है क्योंकि चढ़ाई होती है तेज, उसके बाद चलती है मंदाकिनी नदी साथ साथ, तो मज़ा आता है। लिनचोंडी के बाद पेड़ खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पहाड़ और बर्फ दिखती है, और आखिरी किलोमीटर मंदिर देखने मतलब दिखने लग जाता है, उसकी चोटी दिखने लग जाती है, तो थकान समझो गायब। और हाँ, टेम्परेचर का भी विशेष ध्यान रखना होता है। रात में होता है तापमान -2 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री, तो जब आप तैयारी करें ना तो गर्म कपड़ों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। प्रकाश शिंदे जी जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है, ढूंढता रहा सुकून मैं दुनिया के बाजारों में, पर वो सुकून मिला मुझे केदारनाथ की वादियों में। बर्फ़ की चादर, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी का किनारा, बुला रहे हैं बाबा केदार, यही है अब जीवन का सहारा। लोग कहते हैं कि जन्नत सिर्फ ख्यालों में होती है, शायद उन्होंने केदारनाथ में बहती हवाओं को नहीं महसूस किया। पंकज मौहर जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। एक दिन वहाँ मैं ठहरी हूँ इस बात से, वो भी इत्तफाक रखते हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी जुड़े हुए हैं, राम प्रजापति, प्रणव शिंदे, अंजू अंधेरी ईस्ट से जुड़ी हैं, विजेंद्र घाटोल अकोला से जुड़े हैं, महेश बोहरा जुड़े हुए हैं, गणेश पाटिल वर्धमान से, फिरोज सिगानपुरिया जुड़े हुए हैं जी। बहुत सारे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे लिसनर FM रेनबो के करीब के लिसनर, रजनीकांत पाटिल वधवा। तो अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर इस ब्रेक के बाद। आकाशवाणी
1: FM रेनबो। सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात,
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात,
4: रविवार सुबह 11 बजे
5: आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
4: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण, FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
5: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज DD भारती, DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
5: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
4: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
3: मन की बात।
0: दोस्तों, बात करें हम केदारनाथ धाम की। यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने यानी मई से नवंबर तक खुलता है। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पे मैं होकर आई, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ का जो मंदिर के पीछे जो केदारनाथ चोटी और चौखंबा पर्वत का व्यू होता है वो अविश्वसनीय है, देखने लायक है। 2013 की बाढ़ में जब सब बह गया था, पर मंदिर को एक बड़ी शिला, भीम शिला ने बचा लिया। वो शिला आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। मंदिर के पास से बहती मंदाकिनी नदी का शोर और ठंडा पानी माहौल को बना देता है दिव्य।

मैं जब आपसे बातें कर रही हूँ ना तो मेरे घूस बम्प हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, केदारनाथ धाम ऐसा धाम है, मुझे लगता है कि मैं आज भी और अभी भी वहीं खड़ी हूँ और उन्हीं जादुई नज़ारों में ठगी सी खड़ी उन नज़ारों को देख रही हूँ, उन सुंदर दृश्यों को निहार रही हूँ। वैसे 16 किलोमीटर का ये जो ट्रैक होता है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का भी ट्रैक कठिन होता है, और गौरीकुंड से 5 किलोमीटर का बचता है केदारनाथ, बाकी जो टोटल 16 किलोमीटर है वो कठिन ट्रैक है। हर किसी के लिए संभव भी शायद नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक है। ट्रैक पर रामबाड़ा लिंचोली में रुककर पहाड़ों में रात बिताना एक अलग अनुभव है, और इसके साथ ही घोड़ा, पिट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवा भी है वहाँ पहुँचने के लिए। और हमने भी खैर हेलीकॉप्टर से हिमालय का एरियल व्यू देखा, जो कि एक अलग ही लेवल का होता है, जिसे कि शब्दों में बयां करना आसान नहीं। केदारनाथ जाने का जो सही समय है वैसे वो यही है, मई जून और सितंबर अक्टूबर बेस्ट होता है, पर इस समय ना लाखों की तादाद में पर्यटक और तीर्थयात्री वहाँ पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर ही बनाइएगा वहाँ जाने का प्रोग्राम। और रात का टेम्परेचर वो आपको डराता नहीं है, किंतु फिर भी आपको उस ठंड में अपने आप को एडजस्ट करने के मतलब तैयारी होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए।

बिल्कुल ना, ये हौसला रुकने दीजिए, ना अपने आरजू को रुकने दीजिए। जी हाँ, वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि 9:30 बजे आप वतन का राग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप दिल्ली से सुनेंगे। अभी हम बात करें केदारनाथ धाम की स्पर्श दर्शन। जी हाँ, शिवलिंग के स्पर्श दर्शन सुबह से शाम तक किए जा सकते हैं। दोपहर 12 से 2 बजे तक भोग प्रसादी के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। रात्रि में रुककर रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शाम में 7:30 बजे मंदिर में आरती होती है। वो आरती का माहौल बहुत ही भक्तिमय और सुकून भरा होता है। सुबह की आरती के समय बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की पहली किरण जादुई लगती है। मंदिर परिसर में कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ घंटियों की आवाज, मंत्र और प्रकृति। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक परीक्षा और अनुभव है। शरीर थकता है पर मन को जो सुकून मिलता है और जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं, और कहीं नहीं।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं, और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरेगांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था।

ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह

पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं ठीक 10 और ये वक्त होता है हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए उन्हें सादर और सम्मान के साथ याद करता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वर्तमान पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम शी ह्वांग से मुलाकात की और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। समाचारों में आगे, महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिपरी, चिंचवार तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच की जिम्मेदारी राज्य के अपराध जांच विभाग CID को सौंप दी गई है। आगे समाचार महिला क्रिकेट जगत से। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की महिला टीम को 26 रन से हरा दिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में होगा। पहला मैच भारत ने जीता था। समाचार यहीं पर समाप्त हुए। जुड़े रहिए, बने रहिए 107.1 FM रेनबो के साथ 24/7।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स, हैप्पी मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग में ये वक्त है नमस्ते भारत का। चलिए ना कुछ मस्ती करते हैं, चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, यही करने। क्या मस्ती, जी हाँ।

जी हाँ, झूम ले, मस्ती कर ले, क्योंकि आज है संडे। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 10:06:06। आज आपके साथ है आपकी आरजे दोस्त वैशाली। नमस्ते भारत का सेगमेंट है मेरा दिल मेरी बातें। भाई दिल क्या कहता है सुन लिया जाए, क्योंकि दिल कहता है, दिल सुनता है, दिल गुनगुनाता है, दिल मुस्कुराता है, दिल की बातें हैं दिल ही जाने। पर हाँ, ये जरूर है कि इसके पास है बातों का भंडार। और फिर आज है संडे, यानी दिल खोल कर बात करने का दिन, है कि नहीं?

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर
3: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours
4: म्यूजिकली योर्स। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, दिल की बातें, मेरा दिल मेरी बातें। जी हाँ, संडे से पहले ना हम संडे की जब बात करते हैं तो संडे आने वाला है, संडे आने वाला है, इतनी खुशी होती है ना कि उसके पहले ना कई बार हम संडे के बहुत सारे प्लान बना लेते हैं। और जैसे कि कपड़े धोने हैं, संडे को धो लेंगे, ग्रॉसरी लानी है, संडे चले चलेंगे, और बच्चों को घूमने चलना है, आज नहीं, पक्का संडे चलेंगे। तो अगर हम अपनी सारी लिस्ट संडे के लिए रखेंगे तो ये जो लिस्ट बन के जब तैयार होगी ना तो आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी डे से ज़्यादा लंबी नहीं होगी ये लिस्ट। जबकि हर दिन की तरह संडे भी जो है तो वही 24 घंटों का, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि उथल पुथल से भरा ये दिन बीत जाता है और आ जाता है मंडे। अरे अरे, अभी आप डरिए मत, अभी तो ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए क्योंकि मंडे आने में अभी टाइम है जी, टाइम है, एंजॉय कीजिए आज का

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त तो ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।
3: तो सुना ना आपने, रविवार सुबह 11 बजे आपका ये भी एक जरूरी काम होता है कि आपको कार्यक्रम सुनना है मन की बात। मन की बात जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनता से जो संवाद होता है उसका सीधा प्रसारण इसमें किया जाता है और आप इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, जानकारियों का लाभ लेते हैं। तो संडे की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एक ये काम भी आपका लिस्ट में टॉप में होना चाहिए। पंकज माहौर जी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत ही प्रस्तुति उन्हें बहुत ही पसंद आ रही है, गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। लिख रहे हैं कि सारी लिस्ट वास्तव में हम संडे को बना लेते हैं यानी छुट्टी के दिन, और यदि इतनी लंबी लिस्ट बना लेंगे तो फिर इन सभी कामों में पूरा दिन चला जाएगा, कैसे पता पड़ेगा कि आज संडे है। स्वानंद कुलकर्णी संगोला से पूछ रहे हैं कि आपका नाम, अरे 10:29 हो गए और आपको अभी तक मेरा नाम नहीं पता। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त वैशाली, 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें। और बातें हो रही हैं संडे की। भाई आपका संडे का आज का क्या प्लान है, क्या आपने सोच के रखा है और जो सोचा है क्या वो होता है ये भी पूछना जरूरी है। वैसे प्रणव शिंदे जी लिख रहे हैं कि मेरा दिल मेरी सुनता कहाँ है, ये तो बस FM रेनबो की बातें करता है, जब भी धड़कता है ये सीने में सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो का नाम लेता है। क्या बात है, रेडियो की बातें मेरे दिल को

सुकून देती हैं, जैसे तपती धूप में कोई ठंडी छांव मिले। आप सभी आरजे जब भी हंसकर बात करते हैं, ऐसा लगता है मुझे सारा जहां मिल गया। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में एक सुकून भरा सवेरा है। भाई संडे की तारीफ करी है उन्होंने, संडे के लिए भी कोई ऐसा सोच सकता है, लिख सकता है, बहुत ही खुशी की बात है। मुबारक हो आपको संडे का दिन, आज खुशियों का बसेरा है। हफ्ते भर की थकान मिटाने संडे खास बनकर आता है। सुकून की मीठी धूप संग ये नया दिन नई ऊर्जा दे जाता है। चाय की गर्म प्याली और संडे की सुहानी सुबह, इससे बेहतर सुकून की तलाश में ये दिल अब जाए कहाँ। क्या बात है। अंजू, डॉक्टर अंजू अंधेरी से कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। रजनीकांत पाटिल वर्धमान से जुड़े हुए हैं। रजनीकांत रघुनाथ पाटिल पूरा नाम लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वो अपना। मिलेश गजानन राउत से मिलेश आर्य मिलेश, ये सब कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं टिगरे पाड़ा से। और इसके साथ विजेंद्र घाटोल कहीं बाहर घूम रहे हैं, जो अकोला के रहने वाले हैं, किंतु कार्यक्रम वहां पर भी सुन रहे हैं। भाई उनका मन नहीं लग रहा मुंबई के FM रेनबो के बिना, कितनी अच्छी बात है। बाबा दादर से जुड़े हुए हैं, महंश बाहुरा जुड़े हुए हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए, जिस खुशियों की तलाश में आप यहाँ पर आए हैं, FM रेनबो पर आए हैं, आपने ट्यून किया है, उसी तलाश को पूरा करते हैं और इस हंसी खुशी को साथ मिलकर लुत्फ उठाते हैं हंसी खुशी का।

10:40 हो चुके हैं, बातें कर लें हम संडे की, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो संडे को सुकून भरा बना सकती है ना। तो गौर करें तो भाई, फ्राइडे की दोपहर से यदि हम कैलेंडर पे ध्यान दें और थोड़ा सा मेंटली रेडी हो जाएं, तो छोटे छोटे एम ना बना सकते हैं कि आपको घर के जो काम पूरे करने हैं या घूमने जाना है या आराम करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि सब काम आज ही हो जाए। जैसे आपने संडे का प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, या अमूमन आप क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा सा मेंटली रेडी रहें, तो उसकी भी एक लिस्टिंग होने से शायद हम इसको प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, संडे भी तो हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसकी तैयारी हम बहुत दिनों पहले से करते हैं। हम खुशी भी मनाते हैं और थोड़ा सा लेते हैं टेंशन भी। प्रमोद चंचोलकर ने लिखा है कि दीदी आपने जो केदारनाथ की बातें की, ऐसा लगा जैसे कि हम केदारनाथ पहुंच ही गए थे। बहुत ही अच्छा लगा, आपने जो भीमशिला के बारे में बताया वो जानकर भी हमें बहुत सुकून मिला, और इस समय जो गाने चल रहे हैं उन्हें बेहद पसंद आ रहे हैं। राजेंद्र जुठानी जी कांदीवली वेस्ट से जुड़ चुके हैं। पंकज मोहर लिख रहे हैं कि गाने उन्हें बहुत ही पसंद आ रहे हैं, मेरे गानों की लिस्टिंग करते जा रहे हैं वो, क्या बात है। यानी आपको शायद आगे भी कभी सुनना पड़े तो आपको आसानी रहेगी, ऐसा कुछ। धनंजय नवी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सुरेश काशीनाथ पाटिल और केदारनाथ की बात हुई, मैंने आपको बताया मैं होकर भी आई, और उसी के कारण क्या हुआ, जो टेम्परेचर वहाँ पे था ना, वहाँ होता है माइनस में और यहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण गले में थोड़ा सा असर आया, और ये असर पहचान लिया डॉक्टर अंजू ने। उन्हें मुझे फ़ोन करके मेरे गले की चेक करने के लिए कहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इतने दिल से जुड़े हुए हैं ना कार्यक्रम के साथ साथ हमसे भी पर्सनली, कि ये एक अपनापन, ये जो रिश्ता बनाती हैं इसका कोई मोल ही नहीं है। तो चलिए, आज आपने मेरा संडे बना दिया, तो हम आगे बढ़े अगले गीत की ओर, क्योंकि 10:55 पे मैं आपको छोड़ जाऊंगी मन की बात कार्यक्रम के साथ।

दोस्तों हर काम वीकेंड के लिए टालना ठीक नहीं, क्योंकि या तो आउटिंग पॉसिबल है या फिर है जरूरी काम। ज़्यादा बिजी रहे तो ना तो ठीक से पूरे काम होंगे, ना शॉपिंग, ना मूवी का आनंद ले पाएंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा कि दिन खत्म होता जा रहा है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है क्या?

और हाँ दोस्तों, संडे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्रीन पर टक टक लगा के बैठे रहें। जी हाँ, स्क्रीन से थोड़ा कभी कभी ना दूर भी हो जाएं, थोड़ी आंख हटाएं, यूं ही लोगों से बतियाएं, कुछ अपने कुछ पराए रिश्तों की डोर में बंध जाएं। दिन में आज कुछ समय, सिर्फ कुछ समय, पूरे दिल से किसी की बात सुनिए, चाहे कहीं भी हो, बस ये राह चुनिए। क्योंकि अटेंशन आज दुनिया का सबसे कीमती उपहार है, जिसमें झलकता आपका प्यार है। तो देर मत कीजिए, पहला कदम आप ही लीजिए, स्माइली चेहरे पर लाइए, ऑफलाइन हो जाइए। और हाँ, मूड रखना है मस्त मस्त, तो रहिए 107.FM रेनबो के साथ, व्यस्त व्यस्त। अरे वाह, क्या बैठे बिठाए राइमिंग हो गया ना। जैसे एक संडे ना, घर में राइमिंग या बात ऐसा, वो जो तकिया कराम मिलाते हैं।

तरीके से कुछ अपन, तो वो वैसा करके देखिए कैसे ना घर और घर वालों का माहौल बदलता है। पर पॉजिटिव नोट में, हाँ पॉजिटिव नोट में ही मैं भी बोल रही हूँ। तो मजा लीजिए आज के इतवार का, रविवार का, या फिर संडे, जो भी मानिए, पर बस मना लीजिए। हर पल हर किसी को चाहिए सुकून, तो सुकून से भरा बिताइए ये संडे, और विदा दीजिए आपकी आरजे दोस्त वैशाली को। वैसे अभी हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद आप सुनेंगे मन की बात। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपने साथ अपनों का खास ख्याल। और मैं चाहूँगी कि चाहे वो मैदान रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सभी दिनों पर आप उस हर मैदान को करिए फतह।

इस समय के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचारों में आगे, सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। आगे समाचार खेल जगत से। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 10:54, 10:55 से आप दिल्ली से मन की बात का सीधा प्रसारण सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किड बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट

0: बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए।
4: अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
5: नमस्कार सर। नमस्कार।
6: नमस्कार सर।
4: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
5: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
4: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
7: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे। तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड

0: रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?

0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का

घूमण रेखा यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं
के इंस्क्रिप्शंस

आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को

बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है

0: जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री।

दोस्तों आप सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप मोबाइल पर 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:02 पर आपसे मुलाकात होगी म्यूजिक कैफे में।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार। आज सुबह मुंबई में मॉनसून से पहले की जोरदार बारिश हुई। इससे पिछले कुछ दिनों से शहर में छाई गर्मी और उमस से राहत मिली। मुंबई के आइलैंड सिटी, पश्चिमी उपनगर और पूर्वी उपनगर सहित कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। कुछ इलाकों में जलभराव की भी खबरें हैं। महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की है। उनका दावा है कि बार बार निर्यात पर लगी रोक, प्राकृतिक आपदाओं और कीमतों में भारी गिरावट ने उन्हें गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया है। किसान संगठन ने मांग की है कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में प्याज की खेती की जाती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटिन और तंबाकू की लत से निपटना। अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम पारदर्शिता और आपसी विश्वास को भी कमजोर कर सकते हैं। समाचार समाप्त हुए।

मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल म्यूजिक कैफे में मैं आपका स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसे कि आज पता है आपको 31 मई 31 मई है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, पर साथ साथ आज का दिन आपको इससे ताज्जुब होगा, वो दिवस भी है विश्व तोता दिवस, वर्ल्ड पैरट डे भी आज है। पंछियों की दुनिया की आज मुझे मन कर रहा है कि मैं खास बात करूँ, खासकर तोतों की। वर्ल्ड पैरट डे, रंग बिरंगी पंख, मीठी आवाज़ और इंसानी बोलियों की नकल करने की अद्भुत कला। वेल, तोता एक बोलिए कि एक पक्षी नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। ऐसे अच्छा लगता है जब हरा हरा पंछी ऐसे आकाश में उड़ रहा होता है। बात करेंगे तोतों की रोचक दुनिया की, जानेंगे पक्षियों से जुड़े दिलचस्प तथ्य, सुनेंगे और मैं ये भी सुनूंगी आपकी यादें और कुछ बातें जो आपकी भी किसी पक्षी से जुड़ी हो या फिर आप भी प्रकृति से जुड़ी हो। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत और पंछियों के गाने से। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल तक।

दोस्तों 12:26 हो चुकी है और म्यूजिक कैफे में मैं बात कर रही हूँ तोतो की, क्योंकि आज है वर्ल्ड पैरट डे। जब तोते का नाम आता है हमारे मन में वो हरे रंग के खूबसूरत पंख, लाल चोंच, उनकी प्यारी आवाज़, वो एक तस्वीर आ जाती है आंखों के सामने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोते दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से गिने जाते हैं? वे आवाज़ों को पहचान सकते हैं, शब्द याद रख सकते हैं और कई परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी कहीं आसपास देखा होगा कि अरे तोता बोलता है। भारत में अक्सर हमें पेड़ों पर झुंड में उड़ते हुए तोते दिखाई देते हैं। सुबह और शाम के समय उनकी आवाज़, उनका जो रंग है, वो जब आकाश में उड़ते हैं तो क्या खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। आज हमें आपसे भी जानना चाहते हैं, आज मुझे आपसे भी यही जानना है कि क्या आपके घर, बालकनी या आसपास किसी खास पक्षी का नियमित आना जाना होता है? वो कौन सा पक्षी है और उससे जुड़ी आपकी प्यारी यादें? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको हमारा नंबर पता ही है 8657661071 पर। चलिए पंछियों की बातें करते हैं और पंछियों के गाने सुनते हैं। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

दोस्तों, म्यूज़िक कैफ़े में मैं बात कर रही हूँ पंछियों की, कि आपके आपसे जुड़ी कहानियाँ, कि आपके आसपास, घर के आसपास कोई कहानियाँ हैं. सो मैं सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बता दूँ कि आपको पता है ना कि वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन 1972 के तहत किसी भी वाइल्ड पंछी को, यानी कि जो भी उड़ते पंछी है या खुले में पंछी है, उनको कैद करना गैरकानूनी है. चलिए, अब इसीलिए मैंने पूछा आपके आसपास कौन से ऐसे पंछी आपको दिखाई देते हैं. तो तेजस है, जिन्होंने अपने घर के बाहर कौवे का घोंसला बनाया, वो फोटो भेज दिया. जी, मैं समझ सकती हूँ कि घर के आसपास ऐसे पंछी होते हैं, हम बस उसे नोटिस करना भूल जाते हैं. डॉक्टर अंजू तो कहती हैं कि तोतों की आवाज़ से ही वो उठ जाती है. बिल्कुल, अगर आप गौर करें तो मुंबई में आप अगर ज़रा आकाश में देखेंगे तो आपको हरे रंग के पंछी उड़ते हुए दिख जाएंगे. प्रणव शिंदे कहते हैं कि उनके गाँव वाले घर में अक्सर तोते और चिड़िया आते जाते रहते हैं. प्रमोद चिंचोलकर कहते हैं कि घर के उनके घर के पास ही कबूतर ने घोंसला बनाया है, उसमें अंडे दिए हुए हैं. क्या बात है. और महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से कहते हैं कि वो रोज़ घर की छत पर पंछियों को दाना डालने जाते हैं. ये हुई ना बात कि हम सब पंछियों से जुड़े हुए हैं, बस उनकी कहानी आज एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. म्यूज़िक कैफ़े में सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़.

दोस्तों, म्यूजिक कैफे का आखिरी गाना सुनवाने जा रही हूँ और ठीक एक बजे आप सुनेंगे दोपहर चाय बातमियां और 1:05 पर आपका फेवरेट फरमाइशी कार्यक्रम हिट एंड हॉट में फिर से मुलाकात होगी।

दोस्तों दोपहर की 1:05 का वक्त हो चुका है और आपका फेवरेट कार्यक्रम यानी कि हिट एंड हॉट, जहां पे मैं बजाने वाली हूं आपके फेवरेट फरमाइशी गाने, आप रिक्वेस्ट करेंगे और मैं आपका गाना प्ले करने वाली हूं 8657661071 पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपका नाम और कहां से ये रिक्वेस्ट की जा रही है बस वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डॉक्टर अंजू अंधेरी से सुनना चाह रही है फिल्म जब जब फूल खिले, फिल्म का ये गाना, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। आप है मेरे यानी कि लक्ष्मी के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों हिट एंड हॉट कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी मुझे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं। संजय दर्शन उन्होंने लिखा है कि तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, कौवा, मैना, ये तो रेगुलर है, कभी कभी बगुले और किंगफिशर भी देखने को मिलते हैं। खैर दोस्तों, अब मैं चाहूँगी कि आप अपने गाने रिक्वेस्ट करें और अगला गाना जो सुनवाने जा रही हूँ वो फिरोज सिंगनपुरिया साहब सुनना चाह रहे हैं, फिल्म कहो ना प्यार है से। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो अगर किसी का गाना रह जाए बजाने में, ना बजा पाऊँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, पर अभी भी हमारे पास वक्त है। फ़िलहाल मैं बजाने जा रही हूँ प्रणव शिंदे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हम किसी से कम नहीं फिल्म से ये गाना, और ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार, और 1:40 पर हिट एंड हॉट जारी रहेगा। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से धड़क तक।

दोस्तों हेड एंड हार्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपकी रिक्वेस्ट के गाने बजा रही हूँ और अगले जो दो गाने मैं बजाने वाली हूँ, पंकज महोड धड़कन फिल्म से सुनना चाह रहे हैं ये गाना, और स्वाति पांडे वाराणसी से फिल्म रन का ये गाना सुनना चाह रही है जो अपने हस्बैंड के लिए सुनना चाह रही है। बिल्कुल मैं ये दो गाने बैक टू बैक बजा दे रही हूँ। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल तक।

0: अच्छा लगा?
1: रहते हो, रहते हो।

दोस्तों, हेट एंड हॉट आप मेरे साथ सुन रहे हैं, और इससे पहले कि मैं आखिरी फरमाइश सुनाऊं, ये बात आपसे कहनी है कि हीट स्ट्रोक गर्मी की वजह से किसी को भी हो सकता है। पानी पीते रहिए और खुद का ध्यान रखिए। अगर बहुत ज़्यादा फीवर भी हो जाए तो भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, और अगर बहुत ही सीरियस हो जाए हालत तो आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब तक आपके पास हेल्प पहुँचे तब तक ठंडा पानी छिड़किए, या फिर ठंडे पानी के आप कपड़े को गीला करके फिर शरीर पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने को बचा के रखिए। और हिट एंड हॉट में ये आखिरी फरमाइश मैं सुनवाने जा रही हूँ विजेंद्र घटोल अकोला से, पापा कहते हैं फिल्म से ये गाना सुनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, ये इस पड़ाव का आखिरी गाना है। ठीक 2 बजे आप सुनेंगे इंग्लिश समाचार। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर

0: का क्या है?
1: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
3: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
3: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
3: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर

सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बजकर 2 मिनट और ये मेरे बोलते बोलते ही 3 मिनट का वक्त हो चला है और लव यू ज़िंदगी में लुत्फ़ानंदोज़ होना शुरू हो चुका है। अब आपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी ज़िंदगी से लबरेज़ बातें होंगी, ज़िंदगी से मोहब्बत करवाने वाली बातें होंगी, लेकिन पहले ये गाना सुनते हैं और फिर आते हैं तो इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कुछ नई सी बातों के साथ। कहीं मैं जाइए, आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ।

5:07 का वक्त और लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। और कुछ बातें, तो एक बात यह है कि कभी कभी लोग अंदर से बहुत घायल होते हैं और तमाम जख्म अपने अंदर लेकर जिए जा रहे होते हैं, और कोई बाहरी तौर पर उनको देखे तो सबको देखकर ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं। उन्हें वो दुख, वो पीड़ा जाहिर करने वाला कोई सही साथी नहीं मिला होता जिसे वो अपने

की बात कह सकें और हल्का महसूस कर सकें। अपने आसपास जरा गौर से देखिएगा, अपनों में तमाम लोग आपके ऐसे होंगे जिन्हें बस आपके वक्त की दरकार होगी, और कोई ताज्जुब नहीं कि शायद आप ही वो इंसान हों जो अपने दिल की बातें किसी से बयां करना चाहते हों। तो देर मत कीजिए, सारा वक्त आपका है। आज ही अपने दिल की बात जिससे आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, और हम तक भी आपने अपने दिल की आवाज पहुंचा सकते हैं 107.1 FM रेनबो पर, जहां पर हम आपका इंतजार करते हैं बेसब्री से। आप अपने ख्यालात हम तक पहुंचा सकते हैं 8657-66-1071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से सुनिए 8657-66-1071। फिलहाल तो खामोशियां क्या कहती हैं इस गाने में बयां होता है।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें हदों में तय होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब बात इश्क की हो, मोहब्बत की हो, तो अपने एहसास को दिल में जज्ब करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप मोहब्बत

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

5:35 का वक्त और लव यू जिंदगी में लुत्फानंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और अर्ज कर रहे थे कुछ बातें, उन्हीं में से एक बात ये भी है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम दुनियादारी के चलते करने से कतराते हैं। मसलन कोई मनपसंद करियर चुनना हो, या मर्जी के मुताबिक कुछ करना हो, या अपनी पसंद का कोई रिश्ता चुनना हो, रिलेशन चुनना हो, हम हर चीज में दूसरों को पहले और खुद को बाद में रखते हैं। एक हद तक तो ये बात सही लगती है, लेकिन जब ये बात हम पर हावी हो जाती है, समस्याएं वहां से पैदा होती हैं। क्योंकि जब हम अपने फैसले नहीं ले पाते, खुद के फैसले नहीं ले पाते, और दुनिया को, समाज को, इन सब चीजों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, और यकीन मानिए कि दुनिया को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से एक ना एक नाराजगी रही जाती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कुछ फैसले आप अपने विवेक के आधार पर करें। जो चीजें आपकी जिंदगी में अहमियत रखती हैं, उन्हें खुद से दूर न जाने दिया जाए। अहमियत से जुड़ी बात हम आगे भी करेंगे, फिलहाल तो हमारे लिए अहमियत ये है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, और कुछ नाम हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नामों में प्रणव शिंदे साहब हैं, महेश बोरा साहब हैं, राकेश माथुर साहब हैं, शुभदा जी हैं, रामदास साहब हैं, और अभी अभी वैद्य जी का मैसेज भी हमारे पास आ गया है, और पंकज मोहन साहब का भी हमारे पास मैसेज आ गया है। तो फिलहाल हम चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की तरफ, जो कुछ इस तरह है।

अहमियत पर बात खत्म हुई थी कि जिसे आप चाहते हैं उसे आप महसूस करवाएं कि आप कितनी अहमियत रखते हैं उसकी अपनी जिंदगी में। और अहमियत इस लफ्ज में ही एक अलग तवज्जो जाहिर होती है, और हो भी क्यों ना, जब यह अहमियत किसी शख्स से जुड़ जाए तो आप उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं और आपकी जिंदगी में वो, ये महज बोल कर बताए जाने वाली बात नहीं है, ये तो जाहिर होती है इंसान के छोटे छोटे जेस्चर्स में कि आप सामने वाले इंसान के लिए क्या सोचते हैं, क्या क्या कर देना चाहते हैं। और यकीन जानिए, जब भी आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा कि आप सामने वाले इंसान के लिए कुछ कर सकें और उसे ये महसूस करा सकें कि आपकी ज़िंदगी में उसकी कितनी अहमियत है, तो आप एक ऐसी खुशी को महसूस करेंगे जो शायद आपको पहले कभी ना मिली हो। आपकी खुशी उसको तरजीह देते ही दुबला हो जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। फिर आप कह उठेंगे कि सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने।

तमाम सारे मैसेजेस, तमाम सारी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं। और पंकज महोत्सव आपके मैसेज आए, जो गाने हम प्ले कर रहे हैं उन गानों की तफसील लिखकर भेज रहे हैं आप, उन्हें उनकी डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और अभी आपने खट्टा मीठा से जो गाना सुना उसके बारे में आपने हमें बताया। और ऐसे ही श्याम सुंदर साहब का मैसेज आ गया, बहुत सारे लोग नाम पूछ रहे हैं तो हम अपना नाम बता देते हैं। जी, हमारा नाम आदित्य है और आप हमको ऐसे बोलते हुए सुनते हैं कि आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, आपने साथी दिल की आवाज़ के साथ, नहीं कुछ और बोलते हैं मेरे ख्याल से, हम भी भूल गए। हाँ, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, ऐसा। तो खैर, श्याम सुंदर साहब पूछ रहे हैं कैसे हैं आप और परिवार। जी बिल्कुल सकुशल हैं और आपके हालचाल लेने से और बेहतर हो चुके हैं। और वैदेही जी का मैसेज आया है, बहुत ही सूदिंग गाने हैं इनको सुनने को, ऐसा आप बताती हैं। और राजेंद्र परमार जी का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही इज्जत अफजाई करने वाला मैसेज हम तक पहुंच गया है। और आप अर्ज कर रहे हैं कि आदरणीय नमस्कार, लव यू जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी आदरणीय, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और गणेश पाटिल साहब का मैसेज आ गया है, बहुत बढ़िया, हम हर दिन सुनते हैं, ऐसा लिख रहे हैं आप। गणेश गणपत पाटिल साहब वर्ड से मैसेज कर रहे हैं आप हमें। और हंसमुख साहब भी हमें मैसेज कर रहे हैं, मैं माटुंगा से हंसमुख भाई, एंजॉय कर रहा हूँ एफएम रेनबो, थैंक यू। जी शुक्रिया आपका भी कि आप एंजॉय कर रहे हैं। और हमें किसी ने बहुत ही अच्छी सी बात कुछ लिखकर भेजी थी, वो मैसेज मैं मिस कर रहा हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है। हाँ जी, तो महेश बोरा साहब का मैसेज आया था हमारे पास और आप अर्ज करते हैं, गुड इवनिंग आरजे जी, दिल या दिमाग में कोई परेशानी या घुटन महसूस हो रही है तो अपने किसी विश्वास काबिल एवं समझदार व्यक्ति के साथ ही ये बात अवश्य शेयर करनी चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक परेशानी कम हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और जीने की राह भी मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने अर्ज़ करी हमारी ही बात को आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल तो हम न देरी करते हुए, बगैर देरी के आपको एक और खूबसूरत गाना सुनवाते हैं और फिर उसके बाद शायद वक्त बचा तो एक और खूबसूरत सा गाना, फिर समाचार का अंतराल और फिर बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम, हमारे पसंदीदा प्रोग्राम में आपका अंदाज़े बयां में इस्तकबाल रहेगा।

लिया था नाम तेरा कभी मोहब्बत में, लिया था नाम तेरा कभी मोहब्बत में, मिठास उसकी अब तक मेरी जबान पर है। अंदाज़े बयां का लुत्फ लेना शुरू कर चुके हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। बने रहिए, कहीं मचाइए, सुनते रहिए 101.1 FM रेनबो।

6:20 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ अपने पसंदीदा प्रोग्राम अंदाजे में आमे। जब इंसान मोहब्बत में होता है तो उस दूसरे शख्स से सामने वाले शख्स से क्या क्या नहीं मिलता, तौर तरीका, लहजा और कभी कभी वो उसकी तरह दिखने भी लगता है। उसकी हर कृति में, उसकी हर बनावट में, उसकी हर कला में या उसके हर अल्फाज में जो एक छवि बनती है वो उसी शख्स की बनती है जिससे आप मोहब्बत में होते हैं। बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे ढंग, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

अंदाजे में हमें लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। मोहब्बत एक एहसास और एक ऐसा एहसास है कि जिससे हो जाए बस इंसान उसी का होकर रह जाता है। फिर अगर उसके सामने बहुत सारे लोग मौजूद हों तो वो उसके लिए उतने मायने नहीं रखते। जिस शख्स से मोहब्बत है उसी में परवरदिगार, उसी में खुदा दिखता है। और इस बात के मुतालिक ये एक बात बशीर बद्र साहब ने फरमाई है और कहते हैं कि लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ के फिर कोई वैसा नहीं मिला। कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगे मगर, कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगे मगर हम जिसके हो सके कोई ऐसा नहीं मिला। अब क्या गजल सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद।

मोहब्बत के जज्बे से जब इंसान गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए पहली सी नहीं रहती, अब कुछ चीज़ें बदली बदली सी नज़र आती हैं। फ़ज़ाओं में खूबसूरती बढ़ने लगती है, हर तरफ एक तराना सा एक मौसीकी का आलम रहता है, दुनिया खूबसूरत सी हो जाती है, फ़ज़ा खूबसूरत सी हो जाती है। और जिसको चाहें वो एक खुदा की नेमत सी लगने लगती है अगर वो हासिल हो तो, और खुदा से हर पल जब उसी को मांगता है इंसान तो वो मोहब्बत मोहब्बत ना रहकर एक अकीदत बन जाती है। तब बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।

मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूं, खुदा से रोज तुमको मांगता हूं, मेरी चाहत इबादत हो गई है।

0: तमाम सारी मोहब्बतें, तमाम सारे मैसेजेस हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। पंकज मोहन साहब, राम प्रजापति साहब, फिरोज सगानफोरिया साहब, रजनीकांत साहब, संजय दर्शन जी, श्री राउत जी, राजेंद्र परमार जी, श्याम सुंदर साहब, महेश बोरा साहब, भागेश पाटिल साहब, वैदेही जी और शुभदा जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और तमाम लोगों की फरमाइशें भी हम तक पहुँच रही हैं। और जो दूसरे लोग हमको अभी अभी सुनना शुरू कर चुके हैं, तो उनसे बताना चाहेंगे कि अगर आप अगले प्रोग्राम के लिए अपनी पसंद का कोई गाना हमें सुनना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। यहाँ पर आप अपनी पसंद का गाना हमें बता सकते हैं और हम आपके मैसेजेस के लिए बेताब बैठे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि पिछले चंक में हमने जिनके गाने सुनवाए थे उन्हें थोड़ा सा वक्त दें, और जिनके गाने नहीं प्ले हो पाए थे उनके गानों पर ध्यान दें। फिलहाल तो एक और खूबसूरत सी गज़ल का वक्त हो चला है। गज़ल से पहले एक सुंदर सा शेर है, और वो शेर एक नसीहत भरी बात कहता है। और जब आप मोहब्बत में होते हैं ना, तो बहुत ही गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। खामोशी से क्या बात का कुछ और मतलब भी निकलता है। जब ज्यादा वक्त तक इंसान खामोश रहता है, तो बहुत कुछ बगैर बोले भी समझ लिया जाता है। तो मुशीर बद्र साहब इस पर भी फरमाते हैं कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। तो लाजिम यह है कि आप वो कह ही दें जो आप कहना चाहते हैं, और हम जो आपसे कहना चाहते हैं वो इस गजल में है।
1: आज जाने

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: सात बजकर 11 मिनट का वक्त और ये वक्त बताता है कि वक्त हो चला है हमारा और आपका। हम और आप अब मिलकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएंगे और बहुत सारे खूबसूरत से मैसेज और खूबसूरती को और बढ़ाते हुए मैसेज हमारे पास आ गए हैं और उस फहरिस्त में कुछ नाम हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसमें प्रणव शिंदे साहब, राकेश माथुर साहब, दिग्दर्शन और कविता जी, महेश बोहरा साहब, आकाश प्रकाश शिंदे साहब, अजय साकरे साहब, संजय दर्शन जी, सुरेश काशीनाथ साहब, आप सभी के मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। और इस प्रोग्राम के इब्तिदा के साथ ही हमारे पास एक फ़ोन कॉल भी आया अरविंद जी का और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल की पेशकश की, फरमाइश की। तो हम बग़ैर देरी आपको उस गज़ल से जोड़ते हैं और फिर आते हैं तो आपके गीतों से लुत्फानंदोज होते हैं और आपको सुनाते हैं आपके पसंद के गीत। आप कहीं मजा ही सुनते रहिए हम तुम आदित्य के साथ 107.1 FM रेनबो।

साथ बजकर 19 मिनट का वक्त और बहुत सारी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे नए नाम भी हमारे इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। सतीश अनेजा साहब, विजेंद्र जी, हीरामणि साहब और महाराज कीर्तनपुरी साहब, प्रणव शिंदे साहब, आप सभी का इस्तकबाल है। और हम चलते हैं जल्दी से हीरामणि साहब की फरमाइश की तरफ। और इन्होंने चांद सा रोशन चेहरा फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश की है। और साथ ही आप छत्तीसगढ़ भाटा पारा से मैसेज करते हैं और कई सारे लोगों का नाम, पसंदकर्ता का नाम लिखते हैं आप। हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारा शुक्रिया कि आपने अपना गाना हमें भेजा और बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश। बगैर देरी हम आपको सुनवाते हैं।

अर्ज करते हैं केके साहब की पुण्यतिथि, और उस पुण्यतिथि पर आप केके का बहुत ही खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं, हम रहें ना रहें याद आएंगे ये पल, आपकी आवाज़ का जादू हमेशा दिलों में गूंजेगा, यादों में आपकी महक है, आपकी आवाज़ में सुकून की झलक है, आज भी दिल गुनगुनाता है आपके आपका ही तराना, आप जैसे गायक का जाना संगीत का सबसे बड़ा बहाना। अरे आपने लाइन मिलाने के लिए कुछ भी लिख दिया है, ये सही नहीं जा रहा है कुछ भी। खैर, आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उसके लिए हम भी आपका साथ देते हैं, और ये गाना भी बहुत खूबसूरत है, और इस तरीके से अगर उन तक जहां भी वो हों अगर ये बात पहुंच जाए तो क्या बात होगी। फिलहाल तो सुनते हैं गाना।

जी, इसी के साथ हमारे पास कुछ नए मैसेजेस आ गए हैं और उसी में हमारे पास एक मैसेज आया है सतीश अनिजा साहब का और आप अर्ज करते हैं, नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन। जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आपने बहुत ही खूबसूरत से गीत की फरमाइश हमें भेजी है, वो हम आपको सुनवा ही देंगे, बोलकर क्या ही बताना। चंडीगढ़ से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, सतीश अनिजा और विमला अनिजा, धन्यवाद दिल से, दिल आपने बना कर भेजा है, बहुत खूबसूरत बात और खूबसूरत सा गाना। तो बगैर देरी हम आपको ये गाना सुनवाते हैं और आपसे यही दरखास्त करेंगे कि आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, दिल से दिल तक।

7:37 का वक्त और बहुत ही कम वक्त हमारे और आपके दरमियान बचा है और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोग वाकई में बहुत ध्यान से सुनते हैं प्रोग्राम और बहुत ध्यान से रिव्यू भी लिखते हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास राकेश माथुर साहब का प्रोग्राम आ गया है और आप लिखते हैं, आरजे आदित्य जी, अंदाज़े बयां में आपका कोई सानी नहीं, आपके गज़लों और शायरी पर जो रिसर्च लाजवाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने साथ ही इतनी समझदारी से भी मैसेज भी किया कि परसों आपकी फरमाइश प्ले हो गई थी, इसलिए आप आज किसी भी गाने की फरमाइश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। और साथ ही हम आपको दो गाने बैक टू बैक सुनवाते हैं। तो पहला गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना फिरोज़ साहब ने हमें भेजा है, दिए जलते हैं। और उसके बाद आरती जी की फरमाइश का गाना सुनेंगे, वो भी गाना बहुत ही खूबसूरत सा है, इतना खूबसूरत सा है कि आप शायद कभी खामोशी से तन्हाई में सुन रहे हो तो आप शायद रो भी रहे हैं, इतना खूबसूरत गाना है। फिलहाल तो इस गाने का लुत्फ लीजिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ।

बड़े खुद्दार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

7:46 का वक्त। अब मूड को थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग देते हैं और जो फरमाइश हम तक आई है वो दिव्यांशु जी की फरमाइश आई है और बिल्कुल अलग से मूड का गाना है और थोड़ा सा नया सा गाना है, तो उसका लुत्फ लेते हैं। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है तो सुनते हैं और फिर इसके बाद हम सुनेंगे राम प्रजापति साहब की फरमाइश, वो भी बहुत खूबसूरत सा और उसी के आसपास का गाना है जो काफ़ी सुंदर, काफ़ी काल्पनिक और काफ़ी दिल को लुभाने वाला गाना है। तो फिलहाल तो चलते हैं दिव्यांशु जी की फरमाइश की तरफ और ये गाना सुनते हैं जो फलक तक साथ चलने की बात करता है।

जी, हमने बहुत बार काफ़ी काफ़ी बोल दिया तो वैद्य जी का मैसेज आया हमारे पास कि शायद आपको कॉफ़ी चाहिए। जी देखिए, इतनी देर लगातार बैठने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ही होता है, दरकार तो रहती है लेकिन इजाज़त नहीं रहती है। तो खैर, अभी जाकर हम ढेर सारी कॉफ़ी पियेंगे, मतलब ढेर सारी क्या, एक ही कप पियेंगे। तो खैर, चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। मुकेश कश्यप जी का मैसेज आया हमारे पास, तमाम सारे नाम शामिल हैं, जिला मुरादाबाद दूल्हापुर ग्राम उत्तर प्रदेश से आप मैसेज करते हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इन नामों के साथ एक गाना बन सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। खैर, बहुत सुंदर बात, आपने सभी को खुश कर दिया, सभी के नाम शामिल हो गया। और आरती जी का थैंक यू भी आ गया हमारे पास। प्रमोद जी का गाना प्ले नहीं हो पाया, उसके लिए माजरत, माफी चाहेंगे। और श्याम सुंदर साहब की फरमाइश का गाना भी प्ले नहीं हो सका, तो उसके लिए भी माफ़ी। और अभी जिनका गाना प्ले होने जा रहा है फिलहाल, तो कुछ और नाम है, उनका सबका थैंक यू कर दें। फिरोज जी, बाबा जी, वीरेंद्र जी, दत्तात्रेय साहब, प्रणव शिंदे साहब, दिव्यांशु जी और भाटवाडेकर साहब, पंकज मोहन जी, सतीश अनेजा जी, हीरामणि साहब, महाराज कीर्तनपुरी, राकेश माथुर साहब, दिग्दर्शन कविता, महेश बोरा जी, प्रकाश शिंदे साहब, अजय साखरे साहब, संजय दर्शन जी, सुरेश काशीनाथ जी, राम प्रजापति जी जिनका आप अगला गाना सुनेंगे, और रजनीकांत पाटिल साहब, श्रेय राउत साहब, राजेंद्र परमार साहब, भागेश पाटिल साहब, गणेश पाटिल

साहब, हसमुख जी और रामदास जी, सुचित्रा जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने फरमाइश के लिए भेजे और एक गाना हम आपको सुनाकर जा रहे हैं, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। इनफैक्ट डेट भी बताई देते हैं, 7 तारीख को 5 से 8 फिर से हम आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। शुभ रात्रि।

0: बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोरन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और

0: सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जो सब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम की लहरों पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। रात का आलम है, सन्नाटा बिखरा है, चांद की चांदनी में कुछ सपने सजे हैं, हर साए में छुपा है एक अनकहा किस्सा, जैसे दिल की गहराई में बसता है कोई हिस्सा। अब रात अपनी रंगत में डूब चुकी है और वक्त है उस प्रोग्राम का जिसके लिए आपकी धड़कनें बेताब रहती हैं। यह है रंग महफिल। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 एफएम की लहरों पर और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अजाब जिंदगी जो है वो एक किताब है और हर पन्ने पर लिखा है एक नया रिश्ता। कहते हैं कि कभी दोस्ती का रंग होता है, कभी मोहब्बत का जादू और कभी खामोश वादियों में बिखरी हुई यादें हैं। मोहब्बत का रिश्ता तो वो है जो दिल की हर धड़कन में बसता है, उसकी एक मुस्कान, वो नज़रों का मिलना, मानो सारी कायनात थम सी जाए। और साहब जब मोहब्बत होती है और प्यार होता है तो हर गली हर चौराहा उसकी बातें करता है। और आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमें जीने का मकसद देते हैं। तो चलिए इस रात को और ज़्यादा रंगीन बनाते हैं और खूबसूरत गज़ल के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: साहब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वो चांद जो मेरे आंगन से दिखता है, क्या वो भी तुम्हारी खिड़की से झांकता है? और अगर हाँ, तो क्या तुम भी उस चांद में मुझे ढूंढते हो? इस सवाल का जवाब तो आपके दिल में है, और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि रिश्ते वही खूबसूरत हैं जो हर रात को एक मुलाकात में बदल दें।

जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और जा प्यार की राहों में कांटे भी हैं, मगर उन कांटों में भी एक सुकून है। जब दिल में दर्द मिलता है तो हर दर्द हर गम एक गीत बन जाता है। और आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी गज़लें जो सुकून भी दे रही हैं और आपके जज्बातों को भी छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रात का आलम कुछ यूं है जैसे कोई पुरानी किताब खुली हो और हर पन्ने से कोई याद बिखर रही हो। और साहब वो यादें वो ख़जाना है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी किसी की हंसी, कभी किसी की बात और कभी कोई लम्हा जो बस दिल में बसा है। और जब ऐसी यादें गज़लों के साथ जुड़ जाएं तो फिर महफिल अलग बन जाती है।

रंगे में फिलिक्स दो शरीर शेफ में प्लेयरों पर सवार हैं आप और साहब, अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक इल्तजा आपसे है कि अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल, बाहर भी जाग चुकी है और हम भी जाग चुके हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये रात है, बल्कि रात तो सोने के लिए है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर, दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में भी, जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं। किसी ने अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय की होगी कुछ देर पहले, कोई साइकिलिंग करके आया होगा। बहुत लोग हैं जो हमारा साथ बनते हैं, हमारे संगी बनते हैं इस पहर में, जब 31 मई को छोड़कर अब 1 जून दे चुके

0: दस्तक हम सभी की जिंदगी में, हमारे कैलेंडर्स पे और हमारे रूटीन, हमारे शेड्यूल पे भी। अब आने वाले जो दिन हैं लगभग 30 दिन, उनका पूरा खाका भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग तो मुकम्मल कर भी चुके होंगे कि भाई अब फर्स्ट के बाद क्या करना है, सेकंड के बाद क्या करना है, किसी का अपना बिजनेस है तो किस तरह से उसे रोटेट करना है चीज़ों को। तो ये बहुत सारे जमावड़े हैं, बहुत सारी घटनाओं और किस्से कहानियों के गहवारे हैं जिन्हें हम अक्सर अपने ख्यालों में बुनते हैं। और ऐसा करने में उन जो स्ट्रेस आपको घेर सकती है उससे बचाव करने का मौका देते हैं हम आपको अपने साथ जोड़कर। इसीलिए हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो साथी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी हैं हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो हमेशा हमारे असली साथी होते हैं और हम उनका दोस्त, उनका हमकदम बनने की भरसक कोशिश करते हैं। जैसे कि अब प्रोग्राम है जीरो आवर शो, क्योंकि कैलेंडर बदल चुका है, टाइमिंग्स बदल चुके हैं। अब जीरो आवर के साथ साथ लगभग 14 सेकेंड भी हो चुके हैं, तो वक्त हो चला है जीरो आवर शो का। और इसकी पहल भी हम कर चुके हैं, इसका आगाज भी हम कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है पूरी तरह से प्रोग्राम की। फिल्म हीरो से अभी आपने लता जी को सुना, इसके बाद भी बहुत खूबसूरत गाने हम लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर आप रात भर जागने वाले हैं तो इस रात को रंगीन करने में, इसे और हसीन और सुरमई करने में हम आपकी मदद करें, हम आपके सच्चे दोस्त साबित हों। तो स्वागत आप सभी का, और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं। 9868107070, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। मैं हूं आपका दोस्त रजत, प्रोग्राम है जीरो आवर शो। आप सभी का तहे दिल स्वागत एक बार फिर से।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना

2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में हम आपको समय बताए देते हैं, रात्रि का 1:06:19। और लीजिए, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी रात का। तो अब इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा से ये खूबसूरत से गीत। आनंद लीजिए इन गीतों का।
1: वो है सावन है, सुहानी शाम है। वो है सावन है, सुहानी शाम है। अब भला इनकार का क्या काम है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तोड़ तोड़ मजा लुटा न करो, तो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक।

कहती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाए।

0: छोड़े, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्रोता आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत से गीतों का कार्यक्रम था ये जीरो आज, माफ कीजिएगा, सुहानी रात। साथियों स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 2 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने

आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, तहे दिल स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। करना यह है कि इस ऐप को ढूंढ निकालना है प्ले स्टोर से, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और इस पर सर्च करना है आकाशवाणी रेनबो दिल्ली, और जुड़ जाना है हमसे फौरन से पेश तक। जहाँ तक भी आप सुन सकते हैं हमें, आप सुन रहे हैं, और लगभग पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ऐप के जरिए हमारे श्रोता हैं। काफ़ी जगहों से हमारे मैसेजेस नियमित रूप से मिल भी रहे हैं, और अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ ही हमारे साथ स्नेह मोहब्बत प्रेम बनाए रखते हैं। इसी प्यार, इसी दुलार की खातिर, इसी मोहब्बत की खातिर हमारा पूरा जुड़ाव है आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, आकाशवाणी रेनबो के हमारे नियमित श्रोताओं के साथ, जो बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से इस चैनल से जुड़े हैं, हमारे हर एक शो से, हमारे एक हर एक प्रोग्राम से उनकी वाकफियत है, और वो चाहते हैं कि आकाशवाणी रेनबो का जो जुड़ाव है उनके जीवन से हमेशा जुड़ा रहे, और हम भी यही चाहते हैं। हमें अपने श्रोताओं की कमी कभी भी ना खले, और वो हमेशा हमारे साथ रहें, हर शो में हमारे साथ रहें, उनकी बातें हम तक पहुँचे हैं, उनके मन की जो इच्छा है वो हम तक पहुँचे, मन की बात जो आप कहीं ना कर पाएँ वो हमसे कर सकें, वो गाने जो आप कभी सुनते थे लेकिन आज कम कमोबेश सुनाई देते हैं वो आप हमारे ज़रिए सुन सकें, ये हमारी कोशिश रहती है, और इसी कोशिश को और नायाब किए हुए है हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रोग्राम। और फिलहाल इसी शो की अगर बात करें तो इसका नाम हमने और आपने मिलकर रखा है भुलाए ना बने। तो ऐसी बातें, ऐसे गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा जो वाकई अभी तक आपके दिल से, जहन से, दिमाग से, ध्यान से नहीं हटे हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी, और वाकई वो इस कदर आ चुके हैं आपके जहन में, दिल में जगह बना चुके हैं इस कदर कि भुलाए ना बने। भुलाए ना बने में मैं आपके साथ आपका स्वागत करता हूँ, आपका श्रोता।

0: अपने सभी श्रोता मित्रों का मैं आपका दोस्त रजत बहुत अभिनंदन, बहुत मोहब्बत मिले आपको, बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिन की। और फिलहाल इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ चुके हैं, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल पुरखनूस अभिनंदन, स्वागत, एहतराम।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलू के क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लबनान के जहरानी

नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:06:15 और ये है समय आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इन खूबसूरत से गीतों का।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के

0: संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे ये नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 4:16 आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम सारे गामों से हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप जुड़े हैं इसी शो को सुनने के लिए। सारे गामा का आज का अंक मैं लेकर उपस्थित हूँ, आपका दोस्त रजत। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं। नए पुराने गीतों का संगम ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप अक्सर इन मीटर्स पर, इस फ्रीक्वेंसी पर इसी समय सुना करते हैं जब भोर होने में बस कुछ ही लम्हा शेष है। ऐसे नपे तुले गानों को लेकर हम आते हैं जो खूबसूरत हैं, सारे गामा के धुनों से सुसज्जित हैं और नए दिन का आगमन करने में, उसका स्वागत करने में सक्षम है। एक खूबसूरत स्मूथ मेलोडी के साथ हम आगाज करते हैं आज के दिन का, जो कि तकरीबन हम 4 घंटे पहले कर चुके हैं, लेकिन सारे गामा में हम नए पुराने कुछ गीतों को ही शुमारी रखते हैं जो आपको पसंद आते हैं और पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी रजत का नमस्कार, अभिवादन, स्वागतम प्रोग्राम सारे गामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल, दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।